चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोल कपाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिख

और प्रसाद मैं सब किछ सूझया आसा। इकत पत्र भर उरकट कुरकट, इकत पत्र भर पानी, इकत पत्र भर उरकट कुरकट।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तिरंग अरसेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई। इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ।

योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमणं मत तत ज्ञानं कल्याण निधनं हर नाम मन रमणं चल चित वित भ्रमा भ्रमं जग मोह मगन हितं थिर नाम भगत दिड़ं मती गुर वाक शब्द।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीते नानका बहुते खटिय है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द

जन्म गवावे। एक मूढ़ मुगदना चेतह मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा तेरा।

सदा सुख बसहि, सदा सच रता मन निर्मल, आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

फल जन्म सब बिरथा गवाया राम। तिन नेह फल, तिन नेह फल जन्म सब बिरथा गवाया राम। नेह फल जन्म तिन बिरथा गवाया, ते साकत मोए मर झूरे।

रथ जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हौ कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

मयाण ज्योतिष पावे समरथ सोचिए हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो गुण।

बड़ हंस की वार महला चौथा ललां बहली मां की धुन गावणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा शब्द रते बड़ हंस है।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

जाए। सतगुर मिलै तां निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ध्याया सुखदाता, दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया, तिस गुर कौ हों सदा घुमाया। तिस गुर कौ हों खनिए, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया।

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अप

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब

बन खंड जाए जोग तप कीनो, कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पटै लिखाया।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़ै भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण भय भागी जौ

सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना, हर संत चलाए हर नाली, जिन हर जपया से हर हो।

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप।

जुग मह धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गात नामो पत जन की मान जो जो होग रहाऊ।

बिन गुर मूड भये है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई, खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोकन

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप बुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्ब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

सदा सदा हरत्याय सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाव अगन कुंट मह उर्ध्व लागा हर राखे उदर मंझारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शडावन।

खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुक्म खसमा हो, हुक्म सब वर्तनी। सच साहेब साचा खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी।

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

साज शब्द लिवलाई, आन दिन सहज रह रंग राता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा। सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई, गुरमत सच पाई।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

कह मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावह मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

आप ही घट घट आप अलिपना आपते अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

अवर काश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी। राग

हे दृष्ट दृष्टाय अवमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अवमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अवमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यो प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

सब विद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावै, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी एक शरद

रख रख चरण हर ताल पुरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोवै अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लहिया मन हठ कर्म करै।

जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम। हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम।

है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रसपी संतोख हुआ, सच वसिया मन आए, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सच्चो दहद स्पष्ट।

पंजवां पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ महा विचार पंच दूथ है मंथ।